تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم

اس شان سے جہان میں فرمائی رہبری، اس شان

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
4: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
1: Safre Haj mein aapka khidmat guzar jahan khwab wahan HBL
0: and Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: सफर हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहाँ HBL
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
5: FM 247365 100 FM.
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें। शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: This program is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL
2: and Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
3: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
5: FM 247 365.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: facebook.com/fm247365 fm247365
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का

0: bank, easy wala bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत

0: 11:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: जा।
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सके। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में बढ़ते फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365. This is your music.

0: वेलकम बैक कहेंगे। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पे कर लिया। ये वैसे ऐसा होता है। तो जनाब, मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। थोड़े से खाने पीने के हवाले से बात हो रही थी, नाश्ते के हवाले से भी बात हो रही थी। हलवा पूरी, बोंग का नाश्ता भी होता है भाई पंजाब में। पंजाब में नाश्ते की बड़ी वैरायटीज हैं। वैरायटीज तो यहां पर भी हैं, मगर इस्तेमाल थोड़ा यहां कम है। और जब इस्तेमाल कम होता है तो फिर नजर भी आपको कम आता है इस तरह की वैरायटीज। उसका रीजन ये है कि जो बेचारा बनाएगा तो उसका बिकेगा ही नहीं, तो क्या करेगा वो। पंजाब में तो ये कि कुछ भी बना लो भाई, आप बजरी भी मतलब तल के जो है ना लोगों को खिला दो, खा लेंगे। खैर, तो अब बोंग की बात कर रहा था मैं उससे, वो उसका भी नाश्ता, निहारी का नाश्ता, हलवा पूरी और पठूरे। हमारे कचौरी जो होती है उनके कचौरी की ये एक फॉर्म है, ये पठूरे, ये थोड़े से बड़े होते हैं कचौरी से बड़े, ये भी बड़े मजे के होते हैं। सवाल खैर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके चंद मैसेजेस आए हैं अभी, जिन जिन की आंखें खुल चुकी हैं उन्होंने मैसेज किए हैं। सबसे पहले फीता काटा है हमारे प्यारे से भाई यूसुफ भाई ने पापोश से, और कह रहे हैं कि तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी को, चाची को, रूसा गुलमानों और तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताब गुल लाला, गुफरान भाई और आपके वालिद साहब को सलाम। नदीम भाई, मैं आज कंपनी में रुका हुआ हूँ। अरे वाह वाह, आज भी मैंने अपने जिगरी दोस्त के साथ नाश्ता किया। अरे क्या बात है, पराठा और दूध पत्ती वाली चाय। जुमे को एफएम की जो फैमिली जो गाना डेडिकेट किया है उसके लिए थैंक्स। आई सो स्वीट। अरे थैंक्स थैंक्स नहीं बोलते भाई, आप बहुत स्वीट हैं। यू मेरी मिस को कोई गाना डेडिकेट कर दीजिएगा, यू लाला और दादी जान को दिल से सलाम। वालेकुम असलाम। यार ये मोहब्बत है, प्यार है, इसमें थैंक यू वैंक यू ना करें। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जितने भी मेरे प्यारे लिसनर, सब मेरे लिए काबिले एहतराम और दिल से सबको बहुत मोहब्बत करता हूँ, इज्जत करता हूँ। ये मेरी जानिब से है, आप जो मर्जी समझते रहे। अय हाय, संजू की भी आंखें खुल गई हैं, जाहिर है सुबह से उठी होंगी ये भी। यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं। खुश आमदीद नदीम, कैसे मिजाज है और कैसे हाल है? बहुत आला अल्हम्दुलिल्लाह। और कह रही है मेरी बहुत ही प्यारी जरी नूर अदीला नौरीन बहना के लिए प्यार कह दीजिए। भाई प्यार और सलाम आप तीनों को संजू की जानिब से। आज किसी का यौम पैदाइश है, दिल से दुआएं हैं ता कयामत सलामत रहे, इलाही आमीन। 23 अगस्त, अगस्त के महीने में। अच्छा, ये 23 अगस्त हो चुकी है तो लिहाजा स्टार भी चेंज हो चुका है। कौन सा स्टार है भाई ये बताइए आप। अच्छा जी, 1000 मुखलिसाना कोशिशों और मोहब्बत के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहे तो उसे सबसे कीमती तोहफा जो आप दे सकते हैं वो है रास्ता। क्या बात है। वैसे एक बात, ये फैक्ट है, आपकी जानिब से मोहब्बतें, खुलूस, एहतराम अपनी जगह रहे और सामने वाला बंदा जो है वो कदर ही ना करे यार, तो फिर उसको रास्ता ही दिखाना चाहिए। सर ये रास्ता है, यहां से आप पार निकल सकते हैं। ताल्लुकात में कुंडी दोनों तरफ से होती है, बस महसूस करने की जरूरत है, पहल किसने की जरा सोचना चाहिए। ये बात भी फैक्ट है, आप अपनी कुंडी खोल कर रखें और सामने वाला कुंडी बंद करता रहे और खोलता रहे, ये भी एक अलमिया है। एक तो ये होता है कि दूसरी तरफ से दरवाजे जो है बंद है, तो फिर कोशिशों के बावजूद फिर आप भी कुंडी लगा देते हैं। लेकिन अगर आपने कुंडी खोली हुई है और सामने वाला कभी दरवाजा खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है तो कभी बंद कर रहा है, तो इससे बेहतर है आप भी कुंडी लगा दें, हैं जी। और कहती हैं कि आज नाश्ता बीफ हलीम से घर वालों ने किया। अरे क्या बात है, कहीं से आया था, मुझे चिकन पसंद है। वाह वाह वाह वाह। और अस्सलाम वालेकुम लवली ब्रदर, कैसे हैं? क्या आपको लतीफे पसंद है? मेरे पास आइसक्रीम फालूदे के और बहुत से लतीफों की किताब है दिमाग में। हाँ, ये हो सकता है एसएमएस शाह का ये मैसेज है कि ये दिमाग से ही हो सकता है, दिमाग में ही हो सकती है। आजकल किताबें कौन पढ़ता है? और मेरे दिमाग बचपन से ही लोगों ने बदनाम कर दिया है, फिर लतीफों का जलजला आ जाएगा भाई। तो बस हो जाए फिर कोई एसएमएस शाह। ये मेरे वो वाले एसएमएस शाह नहीं है, हमारे एक बहुत ही पुराने लिसनर है एसएमएस शाह, वो शादी के बाद गायब हो गए थे, तो ये नए एसएमएस शाह आए हैं। तो भैया हो जाए लतीफा फिर कोई, लेकिन आपके लतीफे से पहले जाएंगे एक ब्रेक की जाने।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111178 37।
1: Like us on facebook.com/fm247365fm247365।
3: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: Happy Hour with Nadeem Akhtar.
1: Welcome back, कहेंगे सुनियो एक बार फिर. और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें कि हमारा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुनियो. अभी आज में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक. और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो, सारी आपके मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे. लेकिन अभी आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब. अच्छा, मेरे पास कुछ नए ट्रैक भी हैं मगर वो थोड़े से मेलो से ट्रैक हैं, तो आई डोंट नो कि आप को मजा आए या ना आए. लेकिन एक गाना मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जोहेब काजी और जारा का ये ट्रैक है एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा. मैं वैसे देख लूं ये वही ट्रैक है या नहीं है. चलें ये हम गाना चेक करने के बाद चलाएंगे. फिलहाल आपको एक और नया गाना सुनाता हूं. कहां गया ये रा जनाब एलो फड़ो, कितने गया भाई.

वेलकम बैक, हाय हाय अल्फाज, ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक। हमजा मलिक और जैन साहब का ये ट्रैक था और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा भाई, संजू ने मैसेज किया है कि कायनात के लिए आपकी पसंद का सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। सारे ही मेरी पसंद के चलते हैं। लो जी, की गल हो गई, तो आपकी जानिब से ही करेंगे ना। तो आपकी जानिब से अच्छा सा ट्रैक जो आपको पसंद होगा ना, वो डेडिकेट कर देंगे। हैं जी, जी हैं जी। अच्छा, सवाल मैंने नहीं किया आपसे भाई, सवाल भी हो जाए तो क्या बात है। वैसे मैंने इससे पहले भी एक शो में तस्करा किया था, मगर सवाल नहीं कर सका था मैं। तो तस्करा ये किया था कि इंसान, हाय हाय इंसान कैसा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ होते हैं, चल रहे होते हैं जिंदगी में, लेकिन जब वक्त आता है तो अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला लेता है। तो हर इंसान ने जाना है, सही है ना। जिंदगी जो है ये आरजी जिंदगी है यहां पर, लेकिन दुख बड़ा होता है। अच्छा, अब ये बताना है, सवाल ये है कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसके जिस्म के जो हिस्से हैं वो कितनी देर तक काम करते हैं। मैं कुछ आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं, सवाल का मतलब कुछ जवाब भी बता देता हूं, वरना तो हर ऑर्गन का जो है मैं अलग से सवाल कर सकता हूं। कि जैसे किडनी है, हमारे किडनी होती है ना, जो ये मरने के बाद भी 26 घंटे तक, यानी ये काबिल इस्तेमाल रहती है, ये ऐसे थोड़ी चोरी होती है ज्यादा। तो किडनीज जो है, एक डॉक्टर्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, और इसी तरह जो लीवर है, जिगर जो है हमारा, वो 15 घंटे तक जो है वो जिंदा रहता है, जिगर जिंदा है। इंसान मर जाता है, रूह निकल जाती है। और उसके अलावा लंग्स जो है इंसान के, फेफड़े, वो 8 घंटे तक जो है वो काबिले इस्तेमाल होते रहे, काबिले इस्तेमाल कह सकते हैं आप। और सवाल ये है, हाय, जिसका ताल्लुक अक्सर हम उसका जिक्र भी करते हैं, दिल जो धक धक करता है, ये कितनी देर तक जो है जिंदा रहता है इंसान के मरने के बाद। ये सवाल है आज का, और इसका आपने देना है जवाब, अगर देना चाहें तो 3636 पर। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। हैं जी, ते हैं जी। अच्छा, संडे के हवाले से, मैं नाश्ते के हवाले से भी बात कर रहा था, खाने पीने के। अभी जैसा कि हमें बताया हमारे प्यारे से यूसुफ भाई ने कि भाई पराठा और चाय, ये भी बहुत, और खुसूसी तौर पर जो चाय वाले होटल हैं वहां के जो पराठे हैं, लच्छे वाले, वो पराठे जो हैं वो बड़े शौक से खाए जाते हैं भाई। चाय के साथ अच्छे भी लगते हैं, उनमें थोड़ी सी मिठास भी होती है। लेकिन एक चीज का मुझे समझ में नहीं आता, कराची में जो, हमारे कराची शहर में ये जो सिलसिला कार है ना चाय वाले होटल्स का, इनकी कोई टाइमिंग मुकर्रर नहीं है। पूरी रात स्टिल सुबह फजर तक जो है खुले हुए होते हैं, और फजर के बाद जो है बंद होते हैं, और फिर सुबह दायरे खुल जाते हैं। खैर, वो तो अपना कारोबार कर रहे हैं, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि पूरी रात जो है बेतहाशा रश रहता है। मतलब फारिग कितने हो गए हैं यार हम, कुछ और काम नहीं है भाई। सोचने वाली बात है वैसे। खैर जी, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। एक और बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप लोगों की समातों की नजर करता हूं, ये भी आपको पसंद आएगा, बड़ा पॉपुलर ट्रैक रहा है ये।

0: लंच टाइम अपने कॉलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
1: This program is brought to you by
2: Step School से Foundation हो Strong। Call now at 03111117837।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

Welcome back, आएंगे सुने हो आप सबको हुए फासले और क्यूबी एंड काविश. आई होप कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा. हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरी नूर आ गई हैं. करिए सलाम. कैसे हैं वाली साहब? कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को? उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है. वालेकुम अस्सलाम. और कहती हैं कि मैं अम्मी के घर आई हुई थी, यहाँ लाइट बहुत जा रही है इसीलिए शो नहीं सुन पा रही. अब लाइट है और आपका शो

है और आपका शो भी है। हाय अल्लाह जी, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाय हाय नदीम, ऐसा क्यों होता है कि इंसान इतना झूठ कैसे बोलता है, भरोसा कैसे टूट जाता है? सबको एक जैसा समझना है, कोई कमजोर नहीं होता है। तरबियत खामोशी बेहतर है, इंसान सब भूल जाता है। आप भी इत्तफाक करेंगे, अपनी बेकदरी किरदार कशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप क्या कहते हैं साहब इस हवाले से? मैं एक बात कहता हूं आपको, इस हवाले से ये कहूंगा कि देखिए, ये जो इंसान के लफ्ज है ना, जो इंसान बोलता है सामने को, सामने वाले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लबों से अगर प्यार और मोहब्बत की बारिश हो रही है ना, तो आपको प्यार और मोहब्बत ही मिलेगा। और हर इंसान ये समझता है कि वो जो है वो बहुत ही प्यारी और अच्छी बातें करता है, लेकिन ये तीर वाली बातें कहां होती हैं, ये आपको बताते हैं। जब सामने वाला इंसान जो है, सबसे जो करीबी रिश्ता है उस रिश्ते के हवाले से बात कर लेते हैं, चले मियां बीवी का रिश्ता। इंसान अपनी बेगम से जितनी मर्जी मोहब्बत करता हो या बेगम अपने शौहर से जितनी मर्जी मोहब्बत करती हो, अरूज की मोहब्बत, और लेकिन जुबान के अगर कड़वी है बेगम या शौहर, तो वो मोहब्बत जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू कर देती है। तो लिहाजा हमेशा ये याद रखें कि जिससे भी आपका ताल्लुक हो, चाहे वो आपके मियां बीवी का रिश्ता हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके बहन भाई हो, चाहे आपके दोस्त अहबाब हो, चाहे आपका महबूब हो, तो कोशिश ये किया करें कि लफ्जों का इंतखाब या ऐसी ऐसी बात जिससे उसकी दिल आजारी हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादातर जो है ना, हमारी मासूमियत, इंसान की मासूमियत, आप सोच रहे होंगे कि इंसान मासूम कैसे होता है? होता है भाई। आपने इधर से बात सुनी, उस पर एतबार कर लिया, और सामने वाला अगर आपके साथ मुखलिस भी है तो आपने उसको वो बात कर दी। अब आप कह रहे हैं भाई मैं दिल का साफ हूं, मैंने तो बात कर दी, लेकिन उसके दिल पर जो छुरियां चली या उसके दिमाग पर जो उसने टेंशन ली, उसका भी तो ख्याल करें। नहीं किया आपने, चले मान लिया नहीं किया, लेकिन उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया चेंज होना शुरू हो जाता है। वो जो प्यार और मोहब्बत है, वो कहता है ज़हनी अज़ियत से इंसान बोलता है कि यार बेहतर है खामोशी इख्तियार कर ले आदमी। तो खैर, इस तमाम मतलब सिनेरियो में जितनी भी बातें हमने की हैं, इसमें सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपनी बात जो भी करें उसमें मतलब ये कि ऐसे टॉन्टिंग वाले, तीरंदाजी वाले जो है वो बातों का इस्तेमाल ना करें। बात करने का तरीका होता है, जिस इंसान को बात करने का तरीका आ जाता है वो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां, सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए, हमारी दुआ है, सबके लिए दुआ है। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं, क्या बात है जनाब। कह रहे वाजिब उल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेहंदी हसन या सज्जाद अली की आवाज में कोई गाना सुनवा दीजिएगा यार। बाजार जरूर, बड़ी मेहरबानी होगी, पेशगी शुक्रिया। और समी शेख, नसीम कुरैशी, अय्यूब आफरीदी, खिताबुल्लाला इमरान रियाज और आपके वाजिब उल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में सलाम। हर लम्हा दुआ गो, नई ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, FB एरिया कराची से। और आखिरकार जिसका इंतजार वो शाहकार भी आ गया, समी साहब आज गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सलाम टू ऑल लिसनर, आज लेट सोकर उठा। मैं तो समझा था समी साहब के आप गए होंगे। अरे हाँ, इसीलिए अभी ज्वाइन किया है। और जनाब कोई गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं आप होने वाली दुल्हन को? हैं जी, जी हैं जी, करेंगे जी, जरूर करेंगे। यानी कि समझ रहा है ना आप? हबीबी, बहुत सारे हमारे

प्यारे प्यारे ऐसे लिसनर हैं कि कुछ टेलीफोन कॉल्स की वजह से और कुछ वैसे खामोश हो चुके। हमारे नसीम कुरैशी साहब हैं, प्यारी सी मेरी शहजादी बहना रूसा है। नसीम पटेल जी तो है, वो तो मेरी बहन है, ऐसी है कि वो खामोशी से सुन रही है। हमारी प्यारी सी अम्मा हैं, शहाब साहब हैं, जरदारी साहब हैं, हमारी प्यारी सी आयशा जी हैं, चाची का तो खैर पता ही है सबको, मेरी प्यारी सी आंटी हैं, हलीमा मेरी बहन है प्यारी सी, और सीमा, तीनों सीमा 1 2 3। एक तो बिल्कुल ही गायब हुई हुई है ना, वो सिर्फ फोन करती थी, मैसेज नहीं करती थी। बाकी सीमा सायम और सीमा खान जो है वो कभी कभी मैसेज उनके आ जाते हैं। तो आप सबके लिए एक बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक है, वो कहां गया भाई? एक नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है दो होने चाहिए ट्रैक। अगर छोटे छोटे ट्रैक हुए तो दो, और एक वड्डा जिया ट्रैक हुआ तो फिर हैं जी ते हैं जी। खैर जी, एक ट्रैक है और ये ट्रैक आप सबको डेडिकेट करते हैं, उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। एलो फड़ो, वैसे ये ट्रैक मुझे बड़ा पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे नूरी बैंड वैसे ही पसंद है। तो ये ट्रैक आप सुने, आप सबको पसंद आएगा।

0: वेलकम बैक ओरे सुनो तुम, ब्यूटीफुल ट्रैक है जनाब एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सभी कह रहे हैं कि माशाल्लाह से मौसम अच्छा हो रहा है, दो दिन से करवा ची का बिल्कुल हो रहा है जनाब, हल्की हल्की सी खुनकी महसूस हो रही है भाई, रात को पंखे ठंडे लग रहे हैं भाई, क्या बात की है यार तुमने यार समी। इस हवाले से और किसी ने बात की मां सिवाय समी और हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर ने, कह रही है बारिश का कोई भी अच्छा सा सॉन्ग संजू को इनाम कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे जनाब, और संजू ने कायनात के नाम किया, आपने संजू के नाम कर दिया, चलो अच्छा है, चेन तो चल पड़ी। और समी ने भी किया है फोन दुल्हन को। वैसे समी बारिश का तुम कह रहे हो मौसम बड़ा अच्छा है, तो मौसम में ऐसे मौसम में तुम अपने होने वाली बेगम को ये वाला गाना डेडिकेट करोगे जो तुमने कहा है, जरा सोचना और फिर मुझे बताना। अरे हाय, एक और हमारी प्यारी बहना आ गई है अदीला, कह रही है सलाम प्यारे भाई नदीम, कैसे हैं आप और आज कल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी रूह मन को सलाम और एक सॉन्ग। वाह जी वाह, गाने पे गाना, गाना गाना गाने पे गाना, बिल्कुल करेंगे ट्रैक डेडिकेट। और जनाब सवाल मैंने क्या किया है, सवाल के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे कुछ ही देर में, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ननी मुन्नी सी ब्रेक की जानिब।
1: FM 100's time check. It's 2 p.m. अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।

0: welcome back. Hi, hi.
1: बारिशों के मौसम में
0: ब्यूटीफुल ट्रैक क्या बनाया है सज्जाद भाई ने, जबरदस्त मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि जो स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि इंसान के इस दुनिया फानी से जाने के बाद दिल जो है वो कितनी देर तक जिंदा रहता है, मतलब जो इंसान जब मरता है तो उसकी रूह चली जाती है, लेकिन ये जो जिस्म है इस दुनिया में इसके जो पार्ट्स हैं इसके जो हिस्से हैं वो कितनी देर तक हरकत में रहते हैं, जैसे हाथ हो गए, आंख हो गई, दिमाग हो गया, दिल हो गया, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, तो मैंने कुछ का तो बताया था आपको किडनी वगैरह, लेकिन दिल के बारे में आपसे सवाल किया है कि दिल कितनी देर तक जिंदा रहता है, दिल जिंदा रहता है, हाय हाय जिंदा दिल कहते हैं ना, जिंदा दिल इंसान। नाश्ते वाश्ते की भी बात हो रही थी, अब मौसम की बात करके ना रुख ही चेंज कर दिया जरीन नूर ने, अदीला ने और समी ने, वाह वाह वाह वाह। मैंने जो है जितने भी ट्रैक्स है मेरे पास मौजूद थे, अब मुझे अजीब से लग रहे हैं, अब मेरा दिल कर रहा था कि जो है ना वो मौसम के हिसाब से, यानी कि समझ रहे हैं ना, ट्रैक अगर हो तो क्या बात है। समी आपने बताया नहीं, डेडिकेशन जो दुल्हन के लिए था ट्रैक, उसके हवाले से कुछ बताया नहीं आपने, तो जरूर बताइएगा उस हवाले से भी। और बात कुछ नाश्ते वाश्ते की भी हो रही थी, उस पर भी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। समी आपने क्या नाश्ता किया ये जरूर बताइएगा, सवाल मैं आपको बता चुका हूं। और एक हाँ जबरदस्ती बात यह है कि अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अजब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एतबार के हवाले से भी आपको कुछ बातें बताऊंगा। एतबार का मतलब है ट्रस्ट, जो अक्सर हम कर लेते हैं किसी पे भी, और फिर बाद में हमें हमारे जो ट्रस्ट को एतबार को जो है वो चोट पहुंचती है, धोखा हो जाता है हमारे साथ। नाश्ता कर रहा है भाई समी, समी क्या खा रहे हो बताओ जरा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ जिंदगी कुछ ऐसे खेलती है कि उनका ट्रस्ट इतना ब्रेक हो चुका होता है, इतनी मर्तबा टूट चुका होता है कि वो हर इंसान पर, और ऐसे इंसान पर भी जो ट्रस्टेबल हो, जिस पर एतबार किया जा सकता है, उस पर भी नहीं कर रहा होता है। हाय, आलू का सालन खा रहे हैं, चिकन कढ़ाई, ओए होए हो, आलू का सालन और चिकन कढ़ाई, मतलब दो दो सालन रखे हुए हैं भाई, और कह रहे सॉन्ग प्ले कर दिया, इसका मतलब है तुम इधर उधर गायब हो गए थे। नदीम भाई शादी की डेट फिक्स हो गई है आपके भाई की, माशाल्लाह भाई, इसी बात पर जो है वो फौरन से पेशतर गाना तो डेडिकेट करना बनता है, तो ये लो समी के लिए गाना जनाब, हम सबकी जानिब से और समी की जानिब से उनकी दुल्हन के लिए, एल्लो फड़ो।

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
4: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकी

0: बैंक, इजी वाला बैंक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: 100 FM।
4: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुनियो। हैप्पी आवर्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है, इधर उधर की बातें करे जा रहे हैं हम। सवाल वैसे मैंने एक फ्लोट किया हुआ है जो कि मैं एक बार फिर फ्लोट कर देता हूँ कि आपने ये बताना है कि इंसान के मरने के बाद उसके जिस्म के जो अज़ा हैं उनमें जो दिल है वो कितनी देर तक जो है मरने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहता है या कितनी देर तक वो काबिले इस्तेमाल होता है, ये आपने मुझे बताना है। और इस हवाले से बड़ी थोड़ी थोड़ी करके तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। संजू का मैसेज आया, उन्होंने सॉन्ग के लिए शुक्रिया कहा है। जीती रहे मुस्कुराती रहे, अभी आपको एक और गाना डेडिकेट करना, फिर कहिएगा शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को, उमर खाने वाल से, उमर साहब का खाने वाल से, आपके कुछ कॉलर नहीं आ रहे हैं, कुछ अच्छी आवाज सुनने को नहीं मिल रही है, आपकी आवाज भी अच्छी है, कोई सॉन्ग सुनवा दीजिए। उमर साहब खाने वाल तो क्या बात है उमर भाई, टेलीफोन कॉल्स थोड़ी सी नहीं ली जानी कुछ अरसे से, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, ये समझ लें कि आप ही बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं, मैं आज आपकी आवाज हूँ, जैसे कि अभी आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। तो गाना जरूर डेडिकेट करेंगे आपको, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा जी, आप सबको एक नजर से देखते हो भाई, इसीलिए मैंने कह दिया SMS शाह, अबे जीते रहो यार, एक ही नजर से सबको देखना चाहिए, स्पेशली जब आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हों, क्योंकि हर कोई अपनी मोहब्बत और प्यार और एहतराम से जो है वो सुन रहा होता है, अहम ही तो नहीं सुनता ना कोई, तो जो जो सुन रहा है हर कोई जो है मेरे लिए काबिले एहतराम है, उनमें आप भी SMS शाह। यह SMS शाह का मैसेज था। हाय हाय, कहाँ गायब थे इनाम भाई आप, ना आप आ रहे थे, ना सलीम मेमन आ रहे थे, ना हमारे अयूब आफरीदी लाला आ रहे हैं, ना सभा गुल है, ना ही ना खान है, ना जीबीए ने, तो वो तो मतलब थोड़ा सा चुलबुलापन है ही नहीं। खैर इनाम साहब आ गए, इनाम उल हक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और कह रहे हैं कि अख्तर भाई कैसे हैं आप, आंटी को, चाची को, संजीदा को, सलीम भाई और सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो भाई वो किमाड़ी की तरफ कैसा मौसम है जरा ये जरूर बताइएगा, कि मौसम तो वैसे ही बड़ा खुशगवार हुआ हुआ है। ताहिरा मसूद आ गई हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ताहिरा कैसी हैं आप। अच्छा अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं शुक्रिया तो अदा किया है कि सज्जाद अली की आवाज में सॉन्ग सुनवाते आपने, अरे वो गाना आपको थोड़ी डेडिकेट किया उन्होंने, मतलब मेरा नाम नहीं लिया, मैं सज्जाद अली का गाना चलाते हुए बारिशों के मौसम, सज्जाद अली का एक और गाना चला रहे थे और फौरन डेडिकेट कर देते, कहां गया भाई ये रहा गाना। तो सज्जाद अली का एक ट्रैक है जनाब, ये हमारे अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब की जानिब से, और आप सबको इरफान मेमन की जानिब से, तमाम मेमन कजन्स की जानिब से, सायराम मेमन की जानिब से, सलीम मेमन की जानिब से, आप सबके लिए एल्लो फड़ो, मुझे अच्छा लगता है गाना, थोड़ा सा एमी नाल थोड़ा सा गुनगुना भी दूंगा।

लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी वो थी। सजाल अली का ट्रैक है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ताहिरा कह रही है कि मैं सिलाई में मसरूफ हूँ आजकल। क्या क्या सी रहे हैं आजकल आप जरा बताइएगा। और इनाम उलग कह रहे हैं कि भाई जान इनकी क्लास होनी चाहिए जो गैर हाजिर है। अरे नहीं भाई यार मसरूफ होंगे यार इनाम भाई, यानी कि समझ रहे हैं ना हमारे अयूब आफरीदी भाई, सलीम मेमन भाई। खैर और उसके साथ कह रहे हैं कि भाई जान मौसम बहुत अच्छा है लेकिन नजले जुकाम

इसलिए जुकाम ने पकड़ा हुआ है और गला भी। यार गला तो मुझे भी दो दिन से जो है ना फील हो रहा है, खराश हो रही है गले में। इसका मतलब है मौसम की तब्दीली जो है वो शुरू हो चुकी है। और हमारी प्यारी सी बहना फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही है, सॉरी भाइयों आइंदा नहीं कहूं। आए अल्लाह जी, नहीं भाई कहें आप, नया डायलॉग लेकर आए ना मार्केट में, यानी ये समझ रही है ना आप, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी सी बहन। लगता है पहली दफा ही इनको बुरा लग गया। फरीदा बुरहानुद्दीन ऐसी नहीं कोई बात, प्लीज ऐसा मत सोचिए आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा जनाब, अब सवाल की जानिब बढ़ते हैं, और मैंने आपसे सवाल किया था और अब आपको थोड़ी सी उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। मैंने आपसे ये पूछा था कि इंसानी जिस्म की रूह परवास करने के बाद, यानी कि जब इंसान मर जाता है, तो हमारे जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं, अज़ा जो हैं, वो कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सवाल तो ये था कि दिल कितनी देर तक जिंदा रहता है, लेकिन आपको मैं उसके साथ साथ, दिल के साथ साथ, जिस्म के दूसरे अज़ा के बारे में भी बता दूं। किडनी जो है हमारी 26 घंटे तक जिंदा रहती है, और इस तरह लीवर जो है हमारा वो तकरीबन 15 घंटे तक, इंसान के मरने के 15 घंटे तक के बाद भी जिंदा रहता है। लंग्स जो है इंसान के वो तकरीबन 8 घंटे तक जिंदा रहते हैं, और इसी तरह जो हमारा दिमाग है तकरीबन 20 मिनट तक जिंदा रहता है, और इसी तरीके से हमारे जो बाल हैं, सर के जो बाल होते हैं, ये 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद बाल भी डिशू मर जाते हैं। और हमारी जो स्किन है, यानी कि खाल जिसको कहते हैं, वो 4 घंटे तक जो है हमारी खाल जिंदा रहती है और साथ देती है। और बाकी मसल्स जो होते हैं हमारे, वो तकरीबन 2 घंटे तक मसल्स भी अपनी जगह पर मौजूद जिंदा रहते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो जिंदा होते हैं। और इसी तरह हमारे नर्व्स जो हैं वो 1 घंटे तक काम कर रहे होते हैं। ओए होए यार, हमारा जो खून है, ब्लड सेल, वो तकरीबन जो है 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं। और हमारी जो आंख है, आंख का रेटिना जिससे हम नूर जिसको कहते हैं, वो 4 घंटे तक रहता है। और हड्डियां जो है हमारी तकरीबन 24 घंटे से ऊपर, इसका अंदाजन कहा जाता है कि 24 घंटे से, एक दिन से ज्यादा। और उसके साथ ही अब आ जाते हैं दिल पर। तो दिल जो है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक जिंदा रहता है। दिल, इंसानी दिल जो है वो 10 मिनट तक जिंदा रहता है। और दिल के अंदर वॉल्व्स होते हैं, आपको तो ये पता ही होगा, तो जो वॉल्व्स हैं वो तकरीबन 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं, मगर दिल है वो मर जाता है 10 मिनट में। वैसे तो आजकल दिल जो है वो मिनटों में ही मर रहा है, ठीक है ना, इंसान के जिंदा रहते हुए भी मर रहा है दिल लोगों का, एवं लेकिन लोगों ने दिलों को मार दिया है, ये कहेंगे मार दिया है। तो खैर जी, आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब आपकी समातों तक पहुंचा दिया दिल के हवाले से, और उसके साथ साथ मैंने इंसानी जिस्म में जो और अज़ा हैं उनकी भी मैंने आपको तफसील बता दी कि उनको आप वो कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, अगर मैंने गाना चला दिया, ठीक है जी, बल्कि हाँ चला सकते हैं जनाब। तो अभी हमारी प्यारी सी जो आंटी हैं वो सुन रही होंगी, तो आंटी हमने आपको भी गाना डेडिकेट करना है, लास्ट वाला। फिलहाल ये वाला ट्रैक जो है हम दोनों सीमाओं को डेडिकेट करेंगे, हलीमा को डेडिकेट करेंगे, चाची को, हमारी आयशा जी, हमारी प्यारी सी अम्मा, शहाब साहब अंकल, हमारे नसीम कुरैशी साहब, अरूसा, और उसके साथ साथ नसरीन पटेल हैं, हमारी अजरा शब्बीर हैं, इन सबको हम ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। वेलकम बैक इस वजह से हुआ है, ये वक्त बड़ी तेजी नल गुजर रहा है और अब आपसे इजाजत भी छानी है।

कमीज तेरी काली ते सोने फुला वाली। और जनाब ये ट्रैक आपने सुना और अब जनाब आपसे चाहेंगे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप लोगों से कल रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोगों के साथ होऊंगा म्यूजिक ट्विस्टर में। और जाते जाते हमारी प्यारी सी आंटी को ट्रैक डेडिकेट कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं उनको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: to Music Masti. Music Masti.
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा जो दो घंटे का शो है यानी तीन से पांच, उसमें हम आपको एंटरटेन करें, आपको चिल करें, आपको एनर्जाइज करें और आपकी जितनी भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, गम सब आप भूल जाएं दो घंटे के लिए और फिर हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करें। यकीनन संडे को फंडे बनाने के लिए म्यूजिक मस्ती और महफूज आपका बेहतरीन साथी है और महफूज कई साल से आपके साथ मौजूद है और इस प्रोग्राम को मैं अपना नहीं कहता, आपका कहता हूं क्योंकि ये आपकी फरमाइश में मबनी प्रोग्राम होता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं, तेज गानों की करते हैं, सॉफ्ट मेलोडीज की करते हैं, जो दिल में आता है आप उस गाने की फरमाइश करते हैं। मैंने यकीनन आपकी फरमाइशों को हमेशा पूरा किया था, है और करता रहूंगा। तो अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3666 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। अभी पूरा पूरा एक घंटा 50 मिनट है इस प्रोग्राम में। पहला हाफ हमारा फास्ट ट्रैक्स का होता है, दूसरा हाफ हमारा सॉफ्ट मेलोडीज का होता है। तो बताइए फेसबुक पे, बताइए 3636 पर कि आपको कौन सा गाना सुनना है, जब तक हम आपको एंटरटेन करेंगे और भरपूर तरीके से। एक और बहुत ही जबरदस्त गाना, अपने जमाने का सुपरहिट सॉन्ग, आज भी यकीनन हिट, अली जफर की आवाज़।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: Don't you wanna party with me?
5: I'm ready to party! Party!
6: Yeah! Everybody put your hands up!
7: Gonna dance!
8: Come on, let's party!
9: You're listening to Music Musti. Music Musti.
10: इसमें कोई शक नहीं है कि आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. बेहतरीन गाने आप सुन रहे हैं और चार्ज आपको कर रहे हैं ये गाने. दोस्तों आज है संडे और संडे को फंडे बनाने के लिए जहां बहुत कुछ कर रहे होते हैं वहां कर रहे होते हैं भरपूर नाश्ता. एक्चुअली जो संडे का नाश्ता होता है वो कराची में फेस्टिवल है. ये नाश्ता नहीं है, एक फेस्टिवल की तरह होता है. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते कर रहे होते हैं. जैसे कोई हलवा पूरी खा रहा होता है जिसमें आलू की भजिया होती है, चना होते हैं, अचार वगैरह होता है और संडे को क्लासिक बनाता है. इसके अलावा निहारी का भी नाश्ता होता है नान के साथ और उसके बाद मीठी लस्सी का गिलास भी होता है. लेकिन ये इतना हैवी हो जाता होगा कि शाम तक माजरत के साथ डगारे आती रहती होंगी. इसके अलावा कुछ लोग इससे भी ज्यादा ऊपर जाते हैं, वो खाते हैं पाए कुलचे के साथ, नान के साथ, जो यकीनन बहुत हैवी होता है. इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा लाइट सा नाश्ता करते हैं, बहुत ज्यादा लाइट नहीं लेकिन थोड़ा लाइट, जिसमें अंडा पराठा है और कड़क चाय के साथ, दूध पत्ती चाय के साथ, ज्यादा देसी ऑमलेट होना चाहिए. लेकिन इसके साथ देसी ऑमलेट होता है ना, जिसमें प्याज होती है, टमाटर है और हरी मिर्च है छोटी वाली. जब हरी मिर्च जबान पर लगती है तो फिर लोग चने और पूरी हलवा जो मैं आपको बता चुका हूँ. इसके अलावा कचौरी का भी नाश्ता करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो फ्रेंच टोस्ट वगैरह खा लेते हैं चाय के साथ. तो बहुत सारे लोग बहुत हैवी नाश्ता भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा नहारी वगैरह का. बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइट नाश्ता करते हैं, फ्रेंच टोस्ट वगैरह का. बहुत सारे लोग जो हैं वो ना बहुत ज्यादा हैवी खाते हैं ना बहुत ज्यादा लाइट खाते हैं, दरमियाना नाश्ता करते हैं, जैसे अंडा पराठा, वो भी चाय के साथ. तो आप बताइए आप कौन सा नाश्ता करना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी या बहुत ज्यादा लाइट या फिर दरमियाना. बताया जरूर करें, अपने राइट मैसेज में जाइए कि अच्छा लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3636 पर. इसके साथ साथ facebook.com/ आज महफूज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है. लेकर आएंगे हम द भंगड़ा किंग ऑफ पाकिस्तान, नन अदर देन सलीम जावेद, अपने जमाने का मशहूर बहुत ही ज्यादा सुपरहिट सॉन्ग. द ट्रैक इज जुगनी. आइए एंजॉय कीजिए, दीजिए हमारा साथ.

All right, चल उड़ जा भोलिया पंछिया, तेरा कोई नहीं परदेश में। पुराने गानों की बात ही कुछ और हुआ करती थी, पुराना दौर ही कुछ और हुआ करता था, पहले की म्यूजिक और हर चीज अलग ढंग और अलग किस्म की हुआ करती थी। अगर पुराने दौर की बात करें तो पुराने दौर के लोगों में बड़ी सादगी हुआ करती थी, खूबसूरती हुआ करती थी, इनके लिबास में सादगी होती थी, इनकी बातों में गुफ्तगू में सादगी और खूबसूरती होती थी। मर्द हजरात थे वो, जरा साफ सुथरे शलवार कमीज, स्पेशली व्हाइट कलर के शलवार कमीज पहना करते थे, ऊपर वेस्ट कोट या अजरक होती थी, सर पर जना कैप। उस जमाने के अगर जैसे वहीद मुराद या नदीम वो जो कपड़े पहनते थे, उस तरह के कपड़े पहनते थे, बेल बॉटम टाइप के, और हेयर स्टाइल भी वैसे ही होता था। और खवातीन जो लंबी कमीज होती थी, चूड़ीदार पैजामा, दुपट्टा लाजमी, सर पर आंचल और साड़ी, गरारे शरारे भी चलते थे। और उस जमाने की हीरोइंस को भी कॉपी किया करती, लेकिन वो भी बड़ी सादा हुआ करती थी। फिर नया दौर आ गया, नया दौर जो होगा वो फ्यूजन हो गया। जी हाँ, शलवार कमीज के साथ जीन्स आ गई, शॉर्ट कमीज के साथ ट्राउजर्स आ गए, कुर्ते के साथ स्नीकर्स आ गए, दुपट्टा अब ऑप्शनल हो गया जी। ये फैशन भी कहाँ कहाँ से आता है। देखिए, पहले फैशन आता था हमारे पास, एक टेलीविजन था, पाकिस्तान टेलीविजन, उसमें जो ड्रामाज आते थे लाइक तन्हाइयां जैसा, तो उसमें मरीना खान ने जो फैशन किया तो इन हो जाता था। उस जमाने की हीरोइंस होती थी ज़ीबा, शबनम वगैरह, तो उनकी। फिर नया दौर आ गया, वो इंस्टाग्राम से फैशन ऑन होते हैं, टिकटॉक से होते हैं, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स से होते हैं, तो ये बड़ा चेंज हो गया। लेकिन वाकई पुराने दौर में बड़ी सादगी और खूबसूरती हुआ करती थी, जैसे कि इस गाने में भी थी। चलिए जी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी पसंद और आपकी फरमाइश।

एक बार फिर तमाम सुनने वालों को महफूज की जानिब से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। शाम के 4 बज चुके हैं और एफएम 100 पाकिस्तान से ये प्रोग्राम जिसका नाम म्यूजिक मस्ती और महफूज हर संडे दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपके लिए पेश किया जाता है और साल साल से आप इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं। आपके पार्टिसिपेशन का, आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त जानते हैं फॉर्मेट लेकिन नए को नहीं पता होता है, उनके लिए हम बताते जरूर हैं कि ये रिक्वेस्ट शो है। 3 से 4 आपने फास्ट टाइस की फरमाइशें सुनी, अब 4 से 5 आप फास्ट की जगह सॉफ्ट मेलेडीज की फरमाइशें करेंगे। तरीकेकार वही होगा, अपने राइट मैसेज में जाएंगे, KHI लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे और 3636 पर रवाना करेंगे। इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज या फेसबुक पर सर्च कीजिए RJ महफूज, मेरा पिक्चर स्टेटस लगा है, वहां पर आइए, फरमाइश बताइए, अपने दिल की बात कीजिए, वीकेंड कैसा गुजरा, हॉलीडे कैसा गुजर रहा है, कल वही फर्स्ट वर्किंग डे है, कैसे आपके क्या प्लान्स हैं, आपके सारी बातें आपने करनी हैं और यकीनन हम आपके साथ रहेंगे मौजूद, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम।

0: You are listening to Music Masti.
1: क्या वादे जी मुहे अपने ही रंग में रंग ले। अरे ये अपने ही रंग में रंग ले जुमला छोटा है मगर इसमें बहुत गहराई है, बहुत सुकून है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने तुम्हें बिल्कुल बदल दिया, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया कि तुम खुद ही उसके जैसा सोचने लगो, उसके जैसा बोलने लगो, चलने लगो, उठने लगो, बैठने लगो, उसके जैसा हंसने लगो, रोने लगो। बात यह है कि जब कोई दिल के बहुत करीब आ जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पसंद तुम्हारी पसंद बन जाती है। उसका गुस्सा भी आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, उसकी खामोशी आपको समझ में आने लगती है, यानी बिना लफ्जों के आप समझने लगते हैं उसकी बात। और ये रंग बहुत जल्दी और जबरदस्ती नहीं चढ़ता है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है ये रंग। ये मोहब्बत का रंग है और जब चढ़ता है तो फिर उतरता भी नहीं है। ओ बकौल शायर की, ऐसी रंग दे रंग ना ही छूटे, धोबिया भी धोए चाहे सारी उमरिया, तो ये धोबी भी नहीं धो पाता इस रंग को। बात रंगों की है और रंग मोहब्बत का सबसे हसीन और खूबसूरत है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके लिए मोहब्बतें बिखेरें, मोहब्बत के रंग बिखेरें और दो घंटे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत यहां पर छोड़कर जाएं। अपने राइट मैसेज में जाइए, क्या चाहिए लिखिए, स्पेस वीडियो अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 366 पर, इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz।

0: क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। पर मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: You are listening to Music Must

0: listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti. Musti. Musti.
2: 100 FM.
3: Chum chum chum. किताब लेके निकले हम अम्मी ने कहा ना रुकना तुम रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम

0: म्यूजिक मस्ती मस्ती मस्ती।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365.
0: FM247365. You are listening. You are listening. Music.
4: मस्ती। जी मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। वक्त कम, मुकाबला सख्त, आखिरी के दो जबरदस्त से गाने आपको सुनवाने हैं। सॉफ्ट मेलोडीज आपकी हमने लाइन अप करनी है, आपकी फरमाइशें पूरी करनी है, लेकिन उससे पहले आपके मैसेजेस हमने जरूर पढ़ने हैं। सईदा हमें मैसेज करी है, सलाम करी है, बहुत आला प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शौकत अली हमें मैसेज कर रहे हैं और पहली मरतबा सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम। तनवीर हमें सुन रहे हैं, तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। शुजात हमें सुन रहे हैं, शुजात थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम। जहरा हमें सुन रही हैं, जहरा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। हबीबुल्लाह हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबीन हमें सुन रही हैं, सबीन शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलाम। उमेरा हमें सुन रही हैं, उमेरा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम। साकिब हमें सुन रहे हैं, साकिब बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलाम। माजिदा हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वालेकुम असलाम। नौशीन हमें सुन रही हैं, नौशीन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम। शिफा हमें सुन रही हैं, शिफा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। अपने राइट मैसेज में जाइए, क्या चाहे लिखिए स्पेस, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 366 पर।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब?
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदेन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: एंड
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
7: सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
8: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
9: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखे।
10: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
11: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
8: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
12: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
8: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज़ कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाइल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر

0: ये इकदामात जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदामात आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शरायत ज़वाबित लागू है।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
5: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
6: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
5: मतलब?
6: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
5: स्पेशल तो लग रही है।
6: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
5: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
7: Lunch time. Apni colleagues ke saath bill split karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the JazzCash app now.
2: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
8: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीक

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल ना करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: FM 247365.
5: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
3: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलेनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत तो जवाब लागू है।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: کسی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
8: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا۔
10: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
8: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
10: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
9: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
10: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
8: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
8: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو

0: चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, ओटीपी या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की आईटी टीम को इत्तला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। यह पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
1: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 24/7/365

0: It's 8 p.m. The Shine Check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: लाइक अस ऑन FM 24/7 365
8: FM 100। 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
9: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदाद मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदाद मंशियात।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247/365

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादियामा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताजीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
7: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
6: मतलब?
7: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
6: स्पेशल तो लग रही है।
7: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
6: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: 100 FM।
10: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
3: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 9 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब?
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
6: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
7: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
9: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
15: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.

the mic check 1 2 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Sabhi sunne walon ko Ayaz Ahmed ki janib se adab. Kaise hain bhai? Ummeed karta hu mazey mein honge, fit fat honge. Aur sun rahe hain 100. अच्छा जनाब, मैसेज आप लोग मुझे करते हैं कि अच्छा स्पेस टेक्स्ट कर देंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर. संडे और संडे वाले दिन मैं आपके लिए प्ले करता हूं इंग्लिश, अरबिक, स्पैनिश, इस तरह के सारे ट्रैक्स. अच्छा क्यू शीट आज जरा मिक्स, नए गाने भी इंग्लिश और पुराने भी. अच्छा जनाब, बातचीत क्या होगी ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन आज जरा म्यूजिक ज्यादा, बातें थोड़ी मैं जरा कम करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैंने आपको म्यूजिक सुनाना है. थोड़ी थोड़ी जरा बीच में नसीहतें भी होनी चाहिए कि गाड़ी तेज मत चलाएं, अगर ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव करो यार, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा जनाब, आगाज करेंगे ईगल्स बैंड से और ईगल्स ये जबरदस्त ट्रैक मैसेज कर रहे हैं 3636 पर.

और मैं जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। अच्छा भाई मिसेस फारूक आ गई हैं, सलाम कह रही। वालेकुम सलाम मिसेस फारूक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक है। और थैंक्स भी कह रही भाई, भाई मुझे मालूम है मिसेस फारूक ये संडे को जो मैं शो करता हूँ ये आपका बड़ा फेवरेट होता है। कोशिश कर रहा हूँ सारे ऐसे ट्रैक हों जो आपको पसंद आए।

वालेकुम सलाम, सब सुनने वालों को भी सलाम कह दिया है। और आज चांद कैसे निकला है? ठीक है भाई, फान भाई आप जुकते लगा दे सरकार, आ जाता हूँ मैं जब मैं फ्री होता हूँ तो बिल्कुल आ जाता हूँ। और आज जनी को स्पेशली जो ये जो शो है ये मुझे खुद भी बड़ा मजा आता है और इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ। जैसा कि ये चेक करें आप जरा,

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
2: मतलब?
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
2: स्पेशल तो लग रही है.
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Active, yummy, adorable, zabardast. Say I've got a crush on you.
8: Kya pyaas to suno yaar.

Now, welcome back, Sunray FM. 100 और साथ साथ messages भी. अच्छा जी और अमरीन हमें वेलकम कह रही हैं, सब सुनने वालों को भी, और कह रही हैं संजय अयाज भाई आपका किस तरह गुजरता है, आप लोगों के साथ इस तरह, और अगर नहीं तो फैमिली में कहीं जा रहा होता हूँ, या मोस्टली ऐसा होता है कि कोई ना कहीं कोई डिनर विनर होता ही, और अगर फैमिली आपकी बड़ी हो यानी लोग ज्यादा हो तो जरा ये सिलसिला ज्यादा रहता है, होता ना बाद कम फैमिली छोटी सी फैमिली तो पता नहीं चलता, हमारे यहाँ जरा ऐसा है दोस्त भी फिर उसके बाद, और तो जरा संडे का दिन अच्छा गुजरता है, सारे काम हम संडे के लिए रख लेते हैं कि भाई ये संडे वाले दिन छुट्टी है तो ये करेंगे, और आपस की बात है उस दिन भी नहीं हो रहा था, अरे भाई यार छुट्टी नेक्स्ट संडे कर लेंगे यार, ये पता नहीं क्यों ऐसा है, और ऐसे इतने सारे संडे गुजर गए, काम वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, लेकिन एक काम है जो खाने का वो हम नहीं छोड़ रहे, हमने कहा नहीं नहीं वहां तो जरूर जाएंगे, तो जनाब इस तरह अमरीन जी मेरा इस तरह संडे गुजर जाता है और मैं बहुत एंजॉय करता हूं, मुझे मजा भी आता है। इसके अलावा जनाब मैसेज कर दिया हमें अनाया जी, क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से, कह रहे इतने दिनों के बाद आपको संडे वाले दिन सुना, मैं भी वाकई सीरियसली अनाया मैं भी बहुत दिनों के बाद आया हूं, मैं माजरत इसके लिए, लेकिन ये कि अब मैं कोशिश करूंगा जरा कम से कम छुट्टियां होनी चाहिए और ज्यादातर जो है वो वक्त एफएम 100 पे गुजरे। अच्छा जनाब, और इसके अलावा रेहान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं अयाज भाई आपके प्रोग्राम की जो क्यू शीट होती है वो मेरी बहुत फेवरेट होती है, खुद सेलेक्ट करते हैं क्या कहते हैं भजन, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, जो आरजे होता ना कोशिश यही होनी चाहिए, अच्छे या बुरे वो एक अलग बात है, लेकिन उसका फ्लेवर यानी जो उसका उसके पसंद के ट्रैक्स हैं वो आपको सुनाई दें, वैसे मैं तो कोशिश करता हूं हर दिन डिफरेंट होना चाहिए, हर दिन जो है ना जरा स्टाइल चेंज होना चाहिए। ओहो भाई आ गई हैं कौन, संजीदा जी कितने गायब हो तुसी, अस्सलाम वालेकुम, और भाई वो भी कह रही भाई सदके चजा तंज है इसमें से तंज चुभा इसमें के भाई सदके आ गए भाई आप, और इसके अलावा कह रही खबर नसरीन प्यारी ने दी, भाई नसरीन यानी कि हमारी मिसेस फारूक क्या कहें, वो तो खैर लॉयल किस्म की जेन्युइन किस्म की FM 100 की वो लिसनर है, क्या कहने, और आप भी संजीदा जी आप भी, अच्छा जी खुशी में लिखा नहीं जा रहा, आराम से बेटा ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पी लो। अच्छा जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने पर मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर।

0: हाय हाय हाय,
1: क्या जबरदस्त ट्रैक।
0: अच्छा जनाब, गयासुद्दीन बलबन आ गए हैं मुल्तान से और वो हमें सुन रहे हैं। कह रहे भाई सुबह 2 घंटे बारिश हुई है। बेटा मुंह भी धोया उसमें कि नहीं गयासुद्दीन बलबन? बहरहाल मुल्तान में मजे हैं, फुल टाइम बारिश हो रही है। कराची में मौसम तो बिल्कुल बन गया है। कब होगी बारिश दोस्तों, कब होगी बारिश? कैसे अमाल कर लिए किसी ने, बारिश होके नहीं दे रही। लेकिन एक बात और भी है, और बारिश अगर हो जाए तो फिर एक अजाब शुरू हो जाता है भाई, उसको संभाले कैसे, ये भी तो एक मसला ना। अच्छा जनाब, और बहुत सारे मैसेजेस पहुंच गए हमारे पास। आए हाय, पसंद आ गया अपना राफे भाई को। राफे एंजॉय किया कि नहीं? और मिसेस फारूक, आपने भी इस ट्रैक को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, बहुत सारे मैसेज, अदीला बहन का भी मैसेज आ गया है, अयास कैसे हो? और जहे नसीब, आज आप आ गए। संजीदा आप ही को सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, और इसके अलावा शबाना कैसी? शबाना ये पुराने वक्तों के नाम थे, अब तो ये नाम कोई रख ही नहीं रहा यार। शबाना, नसरीन, परवीन, मैं बड़ा परेशान होता हूँ यार, ये मेरे बड़े फेवरेट नाम है। गुरतुलैन, ये अब सुनने को नहीं मिल रहा, बर्गर नाम मिल रहे हैं, पिशल, अनाया, तो ये थे। ये देखे शमाना फिल्म याद आ गई मुझे तो पुराने वक्तों की। अच्छा अयास साहब कैसे हो? गुलबानों को सलाम। और गुलबानों कहाँ है? मैं उनका पड़ोसी थोड़ी हूँ, मुझे पता होगा कहाँ है, कहीं भी होंगी, अल्लाह उनको खुश रखे, ठीक ही होंगी। और बिलावल भाई किसी दिन से आगे, अरे बिलावल तुम कहाँ गायब हो भाई? आपको, सुंबल जी को, कादिर भाई और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलामु अलैकुम। सर क्या हाल है, कैसे मिजाज है? हाल भी वही है, आप बताएं कैसे हैं? गयासुद्दीन बलबन ने कुछ हंसते मुस्कुराते लिख दिया, कह रहे हाँ भाई नहाया था। बेटा तुम तो नहा लिए, लेकिन गली अब साफ कर लो, क्योंकि वो बहुत मैली होगी होगी। अक्सर बहुत दिनों के बाद कोई बंदा नहाए ना तो हो जाता है फिर जरा। लेकिन गयास माशाल्लाह जबरदस्त आदमी है। अच्छा जनाब, छोटी सी ब्रेक यानी 4 मिनट की, तो इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहे फिल्म 100 अयाज अहमद के साथ। मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं KHR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर।
2: खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैज कैश है ना।
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब?
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
6: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
9: 100 FM।
10: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: Welcome back. Sunday FM 100 of Sansad messages up your watch, 3636. But अच्छा जनाब यूनुस खान आ गए हैं और कह रहे हैं माय सन उस्मान लव यू पाकिस्तान. अच्छा जी बड़ी मेहरबानी. और जरीन नूर की भी मैसेज आ गए. सलाम कैसे हैं सबको. सलाम रमजान पठान मैसेज कर दिया आपने. अयाज भाई आपको और बिलावल संजू और तमाम मिसेस को सलाम. वालेकुम सलाम भैया. वालेकुम सलाम. अच्छा बिलावल कह रहे हैं सर संडे और आप यकीन नहीं आ रहा मुझे. यकीन कर लो बेटा यकीन कर लो आ गया हूं मैं. अच्छा जी सलाम अयाज आपको और सबको सलाम बेवफा संजू को भी. ओए होए रुबाब का मैसेज ये लग रहा है. और ईद ईद जाता जाता मुबारक. पता नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ. यकीन कह रहे मुबारक अयाज हमारे ईद है मालूम. रुबाब जी मुझे तो लगता है रोज ही ईद होती है आपके. मेरे ख्याल से अल्लाह आपको ऐसी खुश रखे. अयाज आपकी आवाज सुनकर बहुत सुकून मिला. हाय और मुझे आपका मैसेज पढ़ के जो दिली सुकून मिला ना सोचा आपने. और कह रही कि आज ईद की खुशी में मैं उस खुशी में सारे गाने आपको प्ले करके सुना रहा हूँ. ठीक है. अच्छा जनाब और इसके अलावा एजाज बख्शी भाई भी आ गए हैं. अयाज भाई आपको और बिलावल जरी और तमाम को सलाम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. हाय संजीदा जी क्या कहने क्या कहने. खुश हो रही है संजीदा और इतनी सारी बातें मुझसे शेयर कर रही है. और कह रही भाई तारीफें कर दी है मैं पढ़ के जो है ना खुद ही खुश हो रहा हूं मैं. लेकिन ये आपका हुस्ने नजर हुस्ने समात क्या कहें जो भी कहें वो है संजीदा जी. लेकिन एक बात अच्छी की यानी भाई वक्त तो है ना वो जिंदगी है. जब कोई हमें अपना वक्त देता है तो वो हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहा होता है. वाह क्या गहरी बात कर दी आपने. वाह वाह वाह जबरदस्त. अच्छा जनाब मैसेज आ गए हैं कहां और मुश्क लैला भी हमें मैसेज करी. मुश्क जी क्या हाल है. वालेकुम सलाम किंग क्या हाल है. आज तो आपने हमारी ईद कर दी थैंक्स. अरे वाह यार वैसे लग रहा है मुझे बहुत दिनों बाद आ गया हूं मैं. हाँ ये बात वैसे हकीकत है. इसी बात पर ये ट्रैक आप सब दोस्तों के लिए.

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad. It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
6: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेरे इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूख منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: Like us on Facebook.com/FM247365 active yummy adorable zabardast.

भाई जनाब सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे जरा से प्रॉब्लम होगी ट्रांसमिशन में, तो भैया अब बिल्कुल सही होगी, अब आप आराम से सुन सकते हैं रेडियो पर भी। अच्छा जनाब अमरीन जी बहुत शुक्रिया तारीफें इतनी करने का। रुबाब जी आपके मैसेज मुस्तकिल आ रहे हैं और मैं खुश हो रहा हूँ आपके मैसेज पढ़ के। और इसके अलावा बिलाल कह रहे हैं, नहीं बिलावल कह रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। अरे हाँ यार 64 ये पूरी टीम आउट हो गई यार बांग्लादेश की, लेकिन उन्होंने भी कर लिया आउट, लेकिन मुश्किल था उस पे पिच पे जो है ना बैटिंग करना। और पाकिस्तानी टीम के बारे में बिलावल भाई क्या कहोगे, वो भी बड़े आराम से इज्जत और एहतराम के साथ इंग्लैंड की टीम के सामने हारी है, जरा सा भी मुकाबला नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो इंग्लैंड की टीम को परेशानी हो, वो किसी प्रॉब्लम में आ जाएं। बिल्कुल फर्मा बर्दारी के साथ गोरों के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आराम से हारे हैं। चलें जनाब ये तो होता रहता है, मैं क्या कह सकता हूं। अच्छा जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानी, और यार ये ट्रैक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और जब भी इस गाने को मैं प्ले करता हूँ या सुनता हूँ बहुत जबरदस्त है। बॉन जोवी और इनका ये ट्रैक मिरेकल, कमाल ही ये ट्रैक है।

0: FM 100's time check. It's 10 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
3: FM 100 FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान
5: एक्टिव यमी डॉरबल जबरदस्त। प्यार तो सुनो यार।

Alright, Janab, welcome back to FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं और भाई ट्रांसमिशन कह रही है अब हल्की हल्की आना शुरू हो गई संजीदा जी कह रही है। बस जनाब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के मसले मसाइल हम पे भी लागू होते हैं, तो दुआ करें इंशाल्लाह सब चीज जो है जरा हिट और फिट हो जाए। अच्छा जनाब सॉन्ग्स को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल और भी मैसेजेस आ रहे हैं, जरा जमा हो जाए फिर मैं आराम से इत्मीनान से पढ़ता हूँ। जरा एक दो गाने जो है ना जरा मैं सुन लूँ, मजा आ रहा है फुल टाइम और संजीदा जी भी जो है फुल टाइम एंजॉय कर रही हैं। लीजिए जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब।

मैं जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 एंड आज थैंक यू वेरी मच, बहुत कह रही मैं एंजॉय कर रही हूँ और बहुत तारीफें कर दी हैं। अरे इनाया जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बिलावल भी भाई सर गुड सॉन्ग एंजॉय कर रहा हूँ, भजन संडे का जो टाइम है ना ये एंजॉय करने का। आए हाय मिसेस फारूक वाह बहुत शुक्रिया। और संजीदा जी भी जाना, यानी जबरदस्त म्यूजिक है। चलें जनाब म्यूजिक की बात है तो ये चेक करें।

0: to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: We will take a short commercial break.
3: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365।
6: Yummy.
7: Adorable.
6: Zabardast.
7: Say I've got a crush on you.
6: Ready to pyaar? To suno yaar.

रंजना वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और ना मैसेज कर दिया हमें बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आशा जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप और सब सुनने वालों को भी सलाम कह दिया है और कह रही है कि सरप्राइज से कम नहीं था अचानक आज आप कैसे ऐसे ही मैं टहलता हूं मैं आगे मैंने कहा भाई आज बहुत दिन हो गए छुट्टी की बस आज जरा फ्री भी था तो मैंने सोचा बिल्कुल जो है अब वैसे मैं कोशिश करूंगा कम से कम छुट्टियां होनी चाहिए ये बात कह रहा हूं अल्लाह खैर करे। अच्छा जी बिलावल कह रहे सर मेरा भाई रावल आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा जनाब रावल भाई कैसे हैं आप रावल डैम याद आ गया मुझे रावल भाई कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से। अरे संजीता जी क्या बात है कह रहे बहुत दिन बाद सलाम आया हम गाने में सलाम का बहुत जिक्र था। अच्छा जनाब इसके अलावा एक बात है शहजादे शो में बोरियत नहीं होती किसी भी दिन का हो क्यू शीट ने और भी मकबूलियत दी मैं कह रहा हूँ हर किस्म का म्यूजिक ना ये सुनने की आदत हो गई है मेरे जो लिस्नर है ना वो पुराने गाने भी सुने नए गाने भी सुने इंग्लिश भी सुने सारे ट्रैक सुने तो म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती। वैसे मुमन एक बात होती है कि जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं या बड़े लोग जो हो जाते हैं उम्र में वो कहते हैं बस वही मुरादी सही था अहमद रुश्दी के गाने सही हैं बस मेहंदी हसन बस इससे आगे कुछ नहीं तो मैं उनको समझाता रहता हूँ भाई और भी हैं औरों को भी सुनो सुने नहीं ना इसलिए आपको अच्छे नहीं लगते सुनेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। और जनाब मिसेस फारूक क्या कहने वॉल्यूम फुल कर दिया उन्होंने पड़ोसी देखे आना जाए कह इस चीज का खास कहना है पड़ोसी आ जाएंगे बेटा क्या हो गया इस उम्र में इतने गाने जोर जोर से सुन रही हो तबियत तो सही है तो आपने उनको कहना है भैया इंजॉय किसी भी उम्र में हो सकता है इसी बात पर ये वाला गाना आपके लिए

जितना आप सुन रहे हैं फिल्म 100 अच्छा अक्सर हमारे कुछ जानने वाले भी हैं जो गाने अंग्रेजी उनको समझ नहीं आ रही होती तो वो समझते पता नहीं कोई गालियां ना दे रहा हूं गलत बात ना हो रही हो तो मैं ऐसे बुजुर्गों से कहूंगा खुदा के लिए यार आपको समझ नहीं आ रही या आप इंजॉय नहीं कर रहे तो उसको इस तरह मत बोले अक्सर आपने सुना होगा भाई ये देखो यार ऐसे कैसे भाईयात गाने लगा मैं हालांकि उसमें कोई ऐसी भाईयातपन है नहीं भाईयातपन तो अगर होने पे हो तो उर्दू में भी है अगर आप इस तरह के गानों की बात करें तो उसमें भी निकल आते लेकिन बहुत कमाल ट्रैक्स है आप सुने तो बस मैं ये कहता हूं कि मैं सुनता रहता हूं उनको और एक कान से सुनता हूं और दूसरे सुना देता हूं मैंने कहा चलो कोई बात नहीं उनकी जितनी लिमिट है जैसे वो उनकी सोच है वो उसी तरह सोचते हैं तो बहुत आला ट्रैक्स होते हैं सुने तो इतने अच्छे अब तो वर्डिंग के साथ भी आने लग गए भाई आप यूट्यूब पे जाएं वर्डिंग के लिरिक्स के साथ आप लिखें सारे आपको सुनाई देंगे समझ में आएंगे लेकिन नहीं बुजुर्ग ने कहा नहीं मैंने तो अंग्रेजी नहीं सुना मैंने तो बुराई करनी है इसकी या हो भी सकता है कोई एक आध गाना सुन ले किसी ने आगे होगी तो ऐसी बात बस उन्होंने गिरा से बांध ली है भाई ये जो चीज है ना बस इसमें अब जो है ना गलत बातें होती तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा अच्छे गाने भी सुनो यार ऐसा ना मैं अभी लगा रहा हूं उसमें आ जाके ये मेरे साथ अक्सर होता है कि जिस चीज की मैं आपको बता रहा हूं तो ये नहीं होता उसी में से निकल आती बहर अल्लाह बचाए एक और ट्रैक की जाने बढ़ते हैं हाय हाय हाय क्या बात है इस गाने सॉन्ग्स अच्छे हैं जरीनूर बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया

भाई जनाब टॉक टू मी, क्या जबरदस्त ट्रैक था, क्या कहने क्या कहने जनाब। और मिसेस फारूक कह रही है कि अगर फोन कॉल्स अगर सही होती तो मैं खुल के तारीफ करती। अरे आपके मैसेजेस पहुंच रहे हैं, आपकी तारीफ मुझ तक पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और संजीदा क्या कह रही है, संजीदा जी ने एक आर्टिस्ट का नाम लिया नसीबुल्लाल का, तो थोड़ा सा वो कह रही है जरा इतने अच्छे उनके गाने नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं इतनी टैलेंटेड वो सिंगर है। मैंने उनका एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था यार, लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे सीडी चल रही हो या कैसेट चल रही हो, इतना परफेक्ट गा रही थी वो। गायकी नो डाउट अच्छी है उनकी, लेकिन अब जब वहां पे जो लोग हैं अब उनसे वो अजीब अजीब गाने गवाएंगे तो उसमें उनका भी एक हद तक मैं कहूंगा कसूर है, लेकिन इतना नहीं है। गवाने वाले जो है वो अजीब अजीब गाने उनसे गवा रहे होते हैं, लेकिन जब वो गा रही होती है, और अच्छे गानों की भी बहुत तादाद है, ऐसा नहीं है, तो कमाल बहुत आला सिंगर है। बस हम ये कि हम अपने आर्टिस्ट की कदर इतनी नहीं करते, और उनकी बुरी चीजें ये है कि बुरी चीज हमारे दिमाग में रह जाती है कि यार ओ हो ये, और बाकी ऐसा ही है, तो अच्छी चीजें भी वो जो है वो उनकी पीछे हो जाती है। अचानक से मैं लेक्चर देने शुरू हो गया हूँ, अचानक से ऐसा क्यों भाई।

ऐसे मुझे याद आ गया तो मैंने क्यू शीट में शामिल कर लिया। थोड़ा सा ये म्यूजिक इंजॉय करें और मैसेजेस करें कि चाहे स्पेस टेक्स करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा जनाब, काफी पुराना ट्रैक है, जरा नए स्टाइल से चेक करें, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
6: FM 24/7/365
7: FM 24/7/365
8: Active,
9: yummy,
8: adorable, seven.
10: Say I've got a crush on you.
11: Kya pyaar? To suno yaar.

भाई जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे FM 100 और मुश्क जी दोबारा आ गई हैं। कह रहे मुनकता हो गया था रब्ता मेरा, अब मैं आ गई हूँ और फिर से सुन रही हूँ। थैंक्स भी कह रही है। अरे थैंक्स कहने की क्या जरूरत है, इंसान दिल का बहुत नरम है, बस नफरतों ने उसे सख्त बना दिया। ओए होए गहरी बात कर दी मुश्क लैला, क्या कहने। और बिलावल भाई क्या कह रहे हैं, सर ये सॉन्ग तो फुल परफॉर्मेंस वाला है लंबादा। इस पे यार अगर वीडियो आपने देखी हो, काफी भी पुराना ये ट्रैक है, क्लासिक ट्रैक है। बच्चे और एक बच्ची थी, क्या खूबसूरत डांस बीच के ऊपर। अब तो बड़े हो गए होंगे लेकिन कमाल परफॉर्मेंस थी। अच्छा जनाब, मिसेस फारूक बस खुश रहें, आप एंजॉय कर रही हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक क्लासिक की बात हो रही है, तुम कैरेबियन क्वीन, एक इतना कमाल गाना था यार, बहुत एंजॉय किया हमने ये। बिली ओशन ऑल टाइम फेवरेट। हाय हाय हाय।

वाह जनाब, सुन रहे एफएम 100 और मिसेस फारूक थैंक यू वेरी मच, और संजीदा जी बहुत शुक्रिया, कह रही है भाई जबरदस्त शो जा रहा है, भाई आप लोगों की मोहब्बत और प्यार है, वरना ऐसे तो कैसे हो सकता था ये जबरदस्त। इसी बात पर एक दफा फिर हो जाए डांस।

भाई जनाब, और कहते हैं ना कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, और बाकी में इतने जबरदस्त ट्रैक यार, और समझ नहीं आ रहा कि अरबी वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन म्यूजिक कमाल। हाय ये गाना भी जबरदस्त, थोड़ा सा सुनाना और उसके बाद टाटा बाय बाय भी करना है। अच्छा जी, मॉडर्न टॉकिंग जो थे इनके भी म्यूजिक स्टाइल एक ही था वैसे।

वही जनाब, और एक ये ट्रैक भी आज प्ले होने से रह गया यार, ये मेरे बड़े फेवरेट है बीजीज, नाइट फीवर, ये गाना भी बड़ा हिट था। हाय मिसेस फारूक कह रही मेरा फेवरेट गाना है, मॉडर्न टॉकिंग तो फिर वो है ना, सुपर डुपर हिट।

बात जनाब नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको प्ले करेंगे, आज के लिए इतना काफी। अच्छा जनाब क्या कह रही, वक्त हमेशा जल्दी गुजर जाता है भाई, वो कहते हैं ना अच्छा वक्त अच्छा गुजर जाता है, स्पीड से गुजरता है। संजीदा जी बहुत शुक्रिया, और गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं नाइस प्लेलिस्ट का, बड़ी मेहरबानी सर, शानदार शो, गुड नाइट बिलावल भाई, गुड नाइट, बहुत शुक्रिया आपका, और मिसेस फारूक आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहती हैं। अच्छा जनाब अब जो मैं ट्रैक प्ले करने वाला हूं, जो लोग कहते हैं ना कि जरा अजीब अजीब गाने होते हैं उसमें, ये कोई गलत बात भी आ जाती है इंग्लिश ट्रैक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये गाना आप सुने, अच्छा पहले मैं कुछ और समझता था, पता नहीं कोई लव सॉन्ग है कि क्या है, अनदर डे इन पैराडाइज, लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जो गरीबों के चल रहे हैं, उन गरीबों के लिए बनाया गया है। अनदर डे इन पैराडाइज, फिल कॉलिंस मेरे बहुत फेवरेट, इसी पे हम अपने शो का एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा भवान।

facebook.com/FM247365. FM 247 365.

Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365.

جب تیری

हाँ राम, क्या मजे की बात है।

رحمت کل نبی

0: ایک طرف جستجو، ایک طرف ہے کشش،
1: ایک طرف آرزو، ہم نے